0: वंदे मातरम
1: वंदे मातरम सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्य

মিতা ধ্রুবদল শোভিনী সুহাসিনী সুমধুর ভাষিণী সুখ।

एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रावण मास की 26वीं तिथि। तदनुसार 17 अगस्त 2026 प्रातः के 5:57 होने को हैं। अब हमारी आज की प्रथम प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं हिंदी में समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के लिए युवाओं, गरीबों, महिलाओं और किसानों को सशक्त बनाना आवश्यक है। श्री शाह ने कल राजस्थान के अलवर में राज्य के 17 जिलों में 6,400 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और लोकार्पण करते हुए ये बात कही।
2: 2047 में अगर भारत को पूर्ण विकसित बनाना है तो युवा, गरीब, अन्नदाता और महिला को ताकतवान बनाना पड़े। आज यही मन से किसानों को किसान सम्मान निधि, पशुपालकों के लिए 500 करोड़ की डेयरी की व्यवस्थाएं, युवाओं को नौकरी और माताओं के लिए, बहनों के लिए सरस डेयरी का एक्सटेंशन का काम आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया।
1: ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। इस कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे।

0: बताया कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान 5 के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। इसमें 17 पेंशन वितरण बैंक सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए तैयार अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रदर्शन करेंगे। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने यूजीसी नेट और परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र की पुनर्परीक्षा की घोषणा की है। इन विषयों में कई त्रुटियों की शिकायतें मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। एनटीए ने बताया कि अंग्रेजी का विषय 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य विषय का पेपर उसी दिन दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र का विषय 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित किया जाएगा। विशाखापत्तनम की सभी उड़ानें आज से भोगपुरम स्थित नए अल्लूरी सीताराम राजू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होंगी। एयर इंडिया भोगपुरम और दिल्ली के बीच 14 साप्ताहिक उड़ानें जारी रखेगी। 77,342 वर्ग मीटर में फैला यह नया टर्मिनल यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा और परिचालन दक्षता प्रदान करता है। बीडब्ल्यूएफ बैडमिंटन चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में शुरू हो रही है। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। वहीं महिला डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की जोड़ी से खेलेगी। आयुष शेट्टी का सामना चीन के शी यू क्यूई से होगा। पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में पहुंच चुके हैं। वहीं भारतीय जोड़ी एमआर अर्जुन और हरिहरन अमस्करणन का मुकाबला आयरलैंड की जोड़ी से होगा। उधर पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गाले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा। पुरुष हॉकी में भारतीय टीम आज नीदरलैंड्स में अपने दूसरे मैच में इंग्लैंड का सामना करेगी। आज का मुकाबला पूल डी में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली टीम के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। भारत ने वेल्स पर 3-1 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की थी। और मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में गंगा के मैदानी इलाकों में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश और लद्दाख में भी ऐसी ही स्थिति रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है चिंतन।
2: सत्य वो है जो शाश्वत है, सार्वभौमिक है, अपरिवर्तनशील है और जिसमें सभी का कल्याण है। जो व्यक्ति कल्याण की भावना से प्रतिबद्ध है वही सत्य बोल सकता है, वही सत्य शोधक है। वर्तमान, भूत और भविष्य की प्रत्येक अवस्था में सत्य सनातन है, निश्चल, पवित्र और आनंददायक है। हम मनुष्यों को व्यावहारिक जगत में रहते हुए सत्य शोधक होना चाहिए। इसके लिए सत्य के असीम सौंदर्य और इसके महत्व को समझते हुए हमें अपने दैनिक लोक व्यवहार में विवेक के प्रकाश को आत्मसात करना होगा। हमारे अंतस का अनुभव सत्य है, ये चेतना से भरपूर है, ये शांति और आनंद देता है। बाह्य सुख सुविधाएं अंतस को आनंदित नहीं कर सकती, क्योंकि परम आनंद तो आत्मा के ज्ञान से मिलता है और आत्मा चेतना का प्रकाश हमारे अंतस या अंतःकरण को पावन करती है, क्योंकि इससे अज्ञान दूर होता है, परम सत्य का साक्षात्कार होता है। आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप ही हमारा परम लक्ष्य है। मन, वाणी और कर्म से सत्य का साधक अपने अभिमान, अज्ञान की आहुति देकर अपनी आत्मा को सत्य के प्रकाश से उजागर कर देता है। सत्य का शोधक संसार के दुर्गुणों को ध्वस्त करते हुए कदम से कदम बढ़ाकर नई सामाजिक संरचना और नए युग का निर्माता बनता है। आइए आज सुबह की शुरुआत सत्य के शोधक बनकर समाज को नई दिशा देने के शुभ प्रयास से करते हैं।

श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे चिंतन, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। लीजिए प्रस्तुत है भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से।

श्रोताओं, भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी जयपुर अजमेर के आमेर चैनल से। वंदना कार्यक्रम के आखिर में लीजिए सुनिए ये देश गान।

श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत के अंतर्गत वंदना कार्यक्रम आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं रामचरितमानस गान का आज का प्रसंग। संगीतकार हैं सतीश भाटिया।

वन गमन के समय श्री राम के शोक में व्याकुल अयोध्या के नरनारी किसी प्रकार भी उनका साथ छोड़ने को राजी नहीं हुए। वे रथ के पीछे खींचे से चल दिए। प्रेम युक्त वचनों द्वारा उन्होंने लोगों को बहुत प्रकार से समझाया, किंतु स्नेह डोर में बंधे लोग किसी भांति लौटने को तैयार नहीं होते। शोक और परिश्रम से थके लोग जब रात्रि में सो गए तो उन्हें देवताओं की माया से गाढ़ी नींद आ गई। दोपहर रात गए श्री राम ने सुमंत्र को रथ कुछ इस प्रकार हांक ले चलने को कहा कि पृथ्वी पर उसके पहियों के निशान ना दिखें। इस प्रकार शिव के चरणों में सिर नवाकर सीता और लक्ष्मण सहित राम अयोध्या के नरनारियों को सोता छोड़कर चल दिए। सवेरा होने पर जब लोग जागे तो श्री राम को ना पाकर हाहाकार मच गया। कहीं रथ के पहियों के निशान तक नहीं मिले। संताप से भरे लोग प्रलाप करते अयोध्या लौट चले। उधर सीता तथा मंत्री समेत दोनों भाई गंगा तट पर बसे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। रथ से उतरकर उन्होंने पतित पावनी गंगा को हर्षित होकर प्रणाम निवेदित किया।

अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे रामचरितमानस कांड का आज का प्रसंग। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, एफएम बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:40 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको रूबरू करवाते हैं कार्यक्रम विवरण से। कार्यक्रम विवरण के अंतर्गत आप जानेंगे आज दिन भर में प्रसारित होने वाले शेष रहे कार्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही देर में यानी 6:45 पर हमारे किसान भाइयों और बहनों के लिए प्रसारित होगा उनका अपना कार्यक्रम खेती नी बात। प्रातः 6:50 पर समय होगा आदिवासी लोक संगीत का। कार्यक्रम वातायन का प्रसारण समय रहेगा ठीक 7:20 पर।

हमारे केंद्र से प्रसारित सुगम संगीत का आनंद आप ले सकते हैं सुबह 9:10 पर और सुबह 11:00।

प्रथम प्रसारण सभा में फिल्म संगीत आप सुनेंगे सुबह 11:30 पर और द्वितीय प्रसारण सभा में फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकते हैं रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक।

0: ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:45 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं किसान भाइयों और बहनों का अपना कार्यक्रम खेती नी बात।
1: खेती नी बात हमारा

फसल है, फसल भी उड़द है, तुअर है, ये भी गरीब जा सका है। खौफ खरपतवार है, इन्हें नियंत्रण अपने समय पर करना जरूरी है, क्योंकि जी अपनी फसल मुख्य फसल है। इन्हें अलावा जी अन्य सन जो खौफ है, इन्हें अपने समय पर नियंत्रण नहीं करना। अपनी फसल सही तरीके से कि बड़ी बड़ी नहीं सके, इन्हें उत्पादन सही नहीं था, मतलब अपने समय पर तो थोड़ा किसान बड़ी हूँ हूँ के अपन छोटे वाले से अपन नियंत्रण कर दूंगा। तो चूरे बदारे बढ़वा तो कि अपने मेहनत में खर्चो बदार पड़ी जाए, नई समय पर खरपतवार काली दे नहीं, ताकि अपना फसल अब भी बड़ी बड़ी सके। मक्का सोयाबीन में भाई का पैसा अकड़ को दे मक्का वगैरह में हल थकी वही महीना की इन्हें भी थकी भी खरपतवार नियम की खोर है ऊपर आ जाएगा। मैंने थकी हुआ कड़पा वगैरह भी अपने देखो जरूरी है। इन्हें दवाई सकती है रासायनिक में भी उपयोग करे बसा किसान भाई रासायनिक दवाई में भी जाते वक्त भी अपने इन्हें सावधानी रखनी जरूरी है। छोटी मोटी सावधानी नहीं रखूंगा किसान भाई तो अपने शरीर पर कई प्रकार नुकसान थी सके, क्योंकि दवाई है जहरीली, इतने अपने छोटे मोटे बातों में ध्यान रखी ना भाई दवाई में छिड़काव करवा है।

मालूम जान हो गए, इसलिए कोई भी खबरा था कि नाकों पर भी सुरक्षा कर भी कोई चश्मा है, अगर पैरों में भी सुरक्षा जरूरी है, बूट मोटी सही ना, क्योंकि कोई जानवर है जहरीलू, तो ये अपन कहीं ट्रस्ट है तो भी अपनों भाई कोई नुकसान थे चुके। अपन जो सीसी है ये भी हमने कितने नदी नाला में या तालाब में कहीं बराई के पास खून टूकी दें तो ये वो नहीं कर वो है जो सीसी है इन्हें अपन सही तरीका था कि खेतर में से गड्ढा खोते देंगे इन्हें दफना दे या इन सीसी में जला देंगे हमें तक कोई नुकसान नहीं थे सके। छोटी मोटी बातें ध्यान रखो किसी को देखो आज सुना सदारा है हमारा सुना सदारा में जो पशुधन है पशु में अपन खरोस हम कि वो पशु गई अभी लो जीवे बोली सके नहीं हम ले सके लेकिन अपने आने समय ध्यान रखो भाई पशु ने के पशु खेती एक डिजाइन में ले जुले खेती खेती में अपना सारा वगैरह उत्पादन था ये अपने पशु में करने लगे जो अनाज है ये अपने

विश्वास है, फिर ई भी शुद्ध होना आपको धर्म एट्ले पशु राखवा किसान नहीं समस्या द्वारा मैंने पशु ने हारंबार जरूर करवी नहीं मक्की मच्छर थकी भी बसावन रखू है कि मक्की मच्छर मेन बीमारी है એમ થકી હું કે મચ્છર કાઢવા થકી પશુ કઈ બીમાર થઈ શકે એમ કહે યા કોઈ તરીકા બી શું કિસાન ભાઈ

0: सुटेबल अनि कालाई नयाँ जानकारी लिन्छ म फेरि फेरि मनाउँदा आज नाम भूमा लग्ञ आज राम राम राम राम।
1: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती नी बात। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है FM बैंड 101.3 MHz पर। प्रातः के 6:50 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं अब आपको सुनवाते हैं आदिवासी लोक संगीत। लोक संगीत के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हितेंद्र आचार्य व साथी कलाकारों की आवाज में गाए कुछ लोक भजन।

0: यहाँ प्रोजेक्ट 500 वर्ग मीटर से बड़ा है।
1: हाँ।
0: और उसमें 8 से ज्यादा फ्लैट है।
1: हाँ।
0: और क्या ये फ्लैट रेरा रजिस्टर्ड है?
1: हाँ? पता नहीं,
0: तो मुहूर्त बाद में देखना, पहले प्रोजेक्ट की रेरा रजिस्ट्रेशन देखो।
2: प्रॉपर्टी हमेशा रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट से ही खरीदे। अगर बिल्डर रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है, रेरा राजस्थान आपका समाधान करेगा। साथ ही पजेशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।
0: राजेश जी ने खरीदा था फ्लैट, पर बिल्डर ने पजेशन में कर दिया लेट। इन्होंने अकल लगाई, रेरा में शिकायत दर्ज कराई, मिला तुरंत पजेशन, हुआ समाधान, साथ ही देरी के लिए हुआ ब्याज और मुआवजे का भुगतान।
2: रेरा रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के पजेशन में देरी या बताई गई सुविधा न मिलने पर रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करें।

0: हेलो,
1: हाँ हाँ
0: आज प्रोजेक्ट देख लूंगा फिर करते हैं डील फाइनल।
2: अरे बड़ी डील भी हो रही है भाई।
0: अरे वो गांव के पास में रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट आ रहा है ना, तो सोचा देख लूं।
2: पर प्रोजेक्ट से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन जरूर देख लेना।
0: पर रेरा तो शहरों में।
2: अरे नहीं नहीं, कोई भी रेजिडेंशियल कमर्शियल या प्लॉटिंग प्रोजेक्ट चाहे शहर का हो या गाँव का, रेरा सब पर लागू होता है।
0: अब प्रोजेक्ट बाद में, पहले रेरा रजिस्ट्रेशन देखूंगा।
3: जी पद।

उस समय हॉलमार्क देखा और प्लॉट खरीदते समय क्या देखा, सिर्फ एड और ब्रोशर। अरे भैया कोई सब्जी भाजी थोड़ी खरीद रहे हो? प्रॉपर्टी खरीदते समय रेरा राजस्थान की वेबसाइट पर देखें कि प्रोजेक्ट रेरा में रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है और फिर भी कोई शिकायत होती है तो रेरा आपका समाधान करेगा और साथ ही पोजीशन में देरी होने पर ब्याज और मुआवजा भी दिलवाएगा।

इस लोक भजन के साथ ही कार्यक्रम आदिवासी लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM 101.3 MHz पर। प्रातः के 7:20 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम वातायन। वातायन के अंतर्गत आज हम आपको सुनवाने जा रहे हैं पूर्वा वोरा से वार्ता। वार्ता का विषय है साइबर अपराध और हमारी सुरक्षा। आज इंटरनेट के द्वारा अनगिनत कार्य किए जाते हैं, जैसे ऑफिस के कार्य, ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन पढ़ाई, रेलवे टिकट बुकिंग, ऑनलाइन पेमेंट और भी अन्य उपयोग किए जाते हैं। ऐसे में इंटरनेट का उपयोग कुछ लोग गलत और अवैध कार्यों के लिए करते हैं। इसमें अपराधी किसी व्यक्ति के कंप्यूटर नेटवर्क को बेकार ट्रैफिक और मैसेज से भर देते हैं। उनका मकसद सिर्फ व्यक्ति, किसी संगठन या सरकार को नुकसान पहुंचाना होता है। साइबर अपराध के कई उदाहरण हैं। ऐसी गतिविधियों में शामिल लोग इसे पैसे कमाने का एक आसान तरीका मानते हैं। क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक साइबर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। ऐसे लोग जो साइबर क्राइम कर रहे हैं, आंकड़ों के मुताबिक उनकी आयु तकरीबन 18 से 30 साल तक की है। अब हम जानते हैं साइबर अपराध के प्रकार के बारे में। साइबर अपराध में धोखाधड़ी, पहचान की चोरी, साइबर स्टॉकिंग, सिस्टम को नष्ट करने के लिए वायरस जैसे मेलवेयर बनाना या भेजना, या फिर पैसे कमाने के लिए डेटा चोरी करना आदि शामिल है। इनमें से मुख्य इस प्रकार से है। पहला, बात करेंगे हम हैकिंग के बारे में। इसमें किसी के कंप्यूटर के डेटा को बिना अनुमति के गैर कानूनी ढंग से उपयोग किया जाता है। हैकर्स घुसपैठ से किसी के कंप्यूटर सिस्टम की हानि पहुंचाते हैं। यह एक बड़ा अपराध है। अब इसके बारे में हम इसके बाद दूसरी है स्टॉकिंग। स्टॉकिंग के अंदर अपराधी किसी व्यक्ति की जानकारी उसके बारे में गैर कानूनी ढंग से निकाल लेते हैं और उसे मैसेज या कॉल करके परेशान करते हैं। इसमें अपराधी का सिर्फ एक ही मकसद होता है, उन्हें मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान पहुंचाना। तीसरा है पहचान की चोरी। आए दिन इंटरनेट पर कई लोगों के डेटा चोरी हो जाते हैं और कुछ लोगों की बैंक संबंधित जानकारी चोरी हो जाती है, जिससे लोगों को काफी नुकसान होता है। ऐसे नुकसान से कई बार ये भी सामने आया है, वह देखने में आया है कि लोगों का पूरा अकाउंट खाली हो जाता है या उनकी पूरी जमा पूंजी चोरी में चली जाती है। चौथा है वित्तीय अपराध। हैकिंग करके अपराधी लोगों के पैसे चुराते हैं। इस प्रकार वे कंपनियों का डेटा भी चुराते हैं और ऐसी कोई भी कॉन्फिडेंशियल चीजों को वो आसानी से अपने तक समेट के रखने की उसमें वो ऐसी सभी चीजों को पूरे सभी सार्वजनिक कर देते हैं और यह वित्तीय अपराध के अंतर्गत आता है। अगला, वायरस द्वारा लोगों की जानकारी पर हमला। साइबर अपराध में वायरस अटैक सबसे बड़ी समस्या है। यह एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर में मौजूद सारी

जानकारी को नष्ट कर देता है। इसमें किसी व्यक्ति के सॉफ्टवेयर को दूसरे के सॉफ्टवेयर से जोड़ दिया जाता है और उसके बाद में उसकी सभी प्रकार की जानकारी जो उसके कंप्यूटर में मौजूद है वो सभी वो हैकर्स आसानी से अपने पास ले सकता है। अगला है फिशिंग। इसके जरिए कोई भी व्यक्ति की जरूरी जानकारी निकाल ली जाती है। इसमें झूठे वेबसाइट या ईमेल भेजकर व्यक्ति की जानकारी चुरा ली जाती है। ऐसे में लोगों को अनजान स्पैम मेल में किसी लिंक को क्लिक करने से सावधान रहने की जरूरत है। अगर आपके पास में कोई भी ऐसा मैसेज या कोई भी ऐसा मेल आए जो आपको कहीं से भी संदिग्ध लग रहा हो तो ऐसे मेल को या ऐसे मैसेज का आप किसी भी तरीके से वापस उनका बदले में कोई जवाब न दें या उन्हें क्लिक करके खोलने की गलती न करें। अगला हम बात करते हैं पायरेसी। पायरेसी में अपराधी डेटा की डुप्लीकेट कॉपी बना लेते हैं जिसके कारण भी काफी नुकसान होता है और उसकी वजह से वो उसी के डुप्लीकेट फोटो या उसके उससे वो पूरे डेटा को आसानी से अपने पास में ले लेता है जो कि एक गलत चीज है। इसके बाद में सिस्टम पर अटैक। साइबर अपराध कंप्यूटर के सिस्टम को क्षति पहुंचाने के लिए एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करता है जिसे मालवेयर कहते हैं। यह कंप्यूटर सिस्टम को बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाता है। अब ये तो हुई बात इसके प्रकार की। अब हम बात करते हैं इस अपराध से बचाव के उपाय। कंप्यूटर हैकर्स से कंप्यूटर को बचाने के लिए सुरक्षा बहुत जरूरी है। ऐसे में एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। लोगों को अपनी वित्तीय या बैंक संबंधी डिटेल किसी से साझा नहीं करना चाहिए और शॉपिंग संबंधित कार्य सुरक्षित वेबसाइटों से ही करनी चाहिए। यूजर्स को एक अच्छा पासवर्ड चयन करना चाहिए जिससे हैकर्स किसी की मेल आईडी हैक न कर पाए। अभिभावकों को अपने बच्चों को सीमित मात्रा में ही इंटरनेट का इस्तेमाल करने देना चाहिए। आजकल देखने में आया है कि बच्चों का मोबाइल पर इस्तेमाल बहुत बढ़ गया है। वो आए दिन कुछ न कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते रहते हैं। यह ही एक फ्रॉड का माध्यम बन चुका है। आसानी से किसी को भी इस तरीके से जाल में फंसा लेते हैं हैकर्स अपने और फिर उसके बाद में वो उनकी पूरी जमा पूंजी को कुछ ही चंद सेकंड के अंदर वो पूरी बैंक अकाउंट को खाली कर देते हैं। सोशल मीडिया वेबसाइटों के पासवर्ड व सेटिंग्स को सही से रखना चाहिए और अपनी निजी जानकारियों को शेयर करने से बचना चाहिए। वित्तीय लेनदेन में सार्वजनिक बैन वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इससे निजी जानकारी चोरी होने का भय रहता है और किसी भी अज्ञात लिंक को खोलने से बचना चाहिए। कभी आपने ये चीज अगर गौर करी हो कि आजकल ये आम हो चुका है, कहीं पर भी आप शॉपिंग मॉल में या किसी बड़े स्टोर पर, वहां पर आपको वाईफाई फ्री में प्रदान किया जाता है। इस वाईफाई को यूज में लेते हुए भी, इसका इस्तेमाल करते हुए भी आप बहुत सावधानी बढ़ते हैं। कोई अन्य अगर आपको शो कर रहा हो या आपको अपने मोबाइल में दिखाई दे तो उसका इस्तेमाल ना करें, उस पर क्लिक ना करें। साइबर अपराध से केवल व्यक्ति नहीं बल्कि देश के लिए भी बहुत भयंकर खतरा है। यह व्यक्ति, संस्थान, यहाँ तक कि सरकार को नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि इसमें न केवल व्यक्तिगत जानकारी बल्कि राष्ट्रीय जानकारियां भी चोरी हो जाती है। अतः साइबर अपराध को लेकर लोगों में जागरूकता फैलाना जरूरी है ताकि लोग इंटरनेट का इस्तेमाल पूरी सतर्कता के साथ करें। हमेशा सोशल मीडिया इत्यादि के पासवर्ड और सेटिंग को सही रखें व हमेशा सतर्क रहें। हमेशा यह ध्यान में रखें कि संदेश कहां से आया है, उसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही कोई प्रतिक्रिया जाहिर करें। इंटरनेट का उपयोग सिर्फ ज्ञान विकसित करने के लिए करना चाहिए, ना कि गलत चीजों के लिए। साइबर सुरक्षा सिस्टम नेटवर्क प्रोग्राम डिवाइस और डेटा को साइबर हमलों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकों, प्रक्रियाओं और नियंत्रण का अनुप्रयोग है। इसका उद्देश्य साइबर हमलों के जोखिम को कम करने और सिस्टम नेटवर्क व प्रौद्योगिकियों के अनाधिकृत शोषण से रक्षा करना है। अब हम बात करेंगे इससे बचने के कुछ तरीकों की। जैसे आप अपने मजबूत पासवर्ड का उपयोग करें। हर खाते के लिए अलग पासवर्ड व उपयोगकर्ता नाम संयोजन बनाएं।

0: कमजोर पासवर्ड न बनाएं। दूसरा है, सोशल मीडिया को निजी रखें। आपके सोशल नेटवर्किंग प्रोफाइल पर ऑनलाइन पोस्ट करते वक्त सावधानी बरतें। तीसरा है, अपने संग्रहण डेटा को सुरक्षित रखें। अगला है, ऑनलाइन अपनी पहचान की सुरक्षा करना। किसी की भी व्यक्तिगत आईडी देते हुए पहले उसकी पहचान सुनिश्चित कर लें। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइटों का उपयोग करते समय आपकी गोपनीयता सेटिंग्स को अनुमति देना भी शामिल है। अगली सावधानी रखें, अपना पासवर्ड समय समय पर बदलते रहें ताकि हैकर्स का आप तक पहुंचना मुश्किल हो जाए, और अपने फोन को सुरक्षित रखें। यह सुनिश्चित करें कि आप केवल विश्वसनीय स्रोतों से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें, अज्ञात स्रोतों से डाउनलोड न करें व अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को अद्यतन रखें। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना कभी न भूलें। कभी कभी हैकर्स आपके जीपीएस के जरिए दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके आपकी हर गतिविधि को ट्रैक कर सकता है। जब भी कभी दुर्भाग्यवश कहीं फंस जाएं, तो मदद के लिए सही व्यक्ति को चुनें, मतलब स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट जरूर दें, वह आपकी जरूर मदद करेगी। साइबर अपराध पर सहायता प्राप्त करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट है। अपनी कंप्यूटर को सुरक्षा सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखें। सुरक्षा सॉफ्टवेयर में फायरवॉल और एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी शामिल हैं। इसके कुछ नारे भी प्रचलित हैं, जैसे कि क्लिक करने से पहले सोचें, सुरक्षा पहले ऑनलाइन और ऑफलाइन, अपना डिजिटल यात्रा को सुरक्षित रखें। तो स्वस्थ रहें व सुरक्षित रहें।
1: इसी के साथ कार्यक्रम वातायन यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:30 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम मुंबई केंद्र से।

0: गाता चल इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। आवाजें आरती मुखर्जी और जसपाल सिंह की थी। गीतकार और संगीतकार थे रविंद्र जैन।
1: जब तक हाथ पैर सक्रिय रहते हैं हमें उनके महत्व का अंदाजा नहीं होता। जब होती हैं हड्डियों या मांसपेशियों की समस्याएं तो समझ नहीं आता कि क्या करें।
2: फर्स्ट साइन इज पेन, वो बता देता आपको कि कुछ गलत हो रहा है।
1: सेहतनामा कार्यक्रम

0: में फिजियोथेरेपिस्ट हर्षदार राजाध्यक्ष आ रही हैं।
1: एक्सरसाइज करते रहो, शुगर और सॉल्ट अवॉइड करो, जब भी पेन हो तो किसी को कंसल्ट करो।
0: 17 अगस्त शाम 4 बजे और 18 अगस्त सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सेहतनामा।
3: कुछ आवाजें सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वे सीधे दिल में उतर जाती हैं। वीर जारा, टोरबाज, इंडियाज मोस्ट वांटेड, सीआईडी, अदालत, जाने कितनी फिल्मों और धारावाहिकों में देखा है उनका अभिनय और सुनी है उनकी सशक्त आवाज।
4: अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं जीवन में, आपके मन में वैसी दीवानगी और एकदम पागलपन होना चाहिए कि मुझे ये करना ही है, इरेस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग।
3: अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, वॉइस ओवर आर्टिस्ट और डबिंग डायरेक्टर पंकज रैना की कश्मीर से लेकर मुंबई तक की सारी यादें करेंगे विशेष मुलाकात 19 अगस्त 2026 को आज के मेहमान कार्यक्रम में शाम 4 बजे। सुनिएगा विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की।

नदिया के पार फिल्म का गीत आप सुन रहे थे आवाजें जसपाल सिंह और हेमलता की थी। गीतकार और संगीतकार थे रविन्द्र जैन। हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में चलिए एक बहुत छोटा सा अंतराल लेते हैं। अंतराल के बाद फिर से उपस्थित होंगे।

हमेरा ही प्यार के इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से बहुत स्वागत। दोस्तों, सादगी भरे अभिनय और शानदार अभिनय से दर्शकों के दिलों को जीतने वाले अभिनेता सचिन पिलगांवकर का आज जन्मदिन है। विविध भारती परिवार की ओर से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सुनते हैं अखियों के झरोखों से फिल्म का ये गाना, जिसे गाया है हेमलता और शैलेंद्र सिंह ने, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

0: वाली ओ झुमके वाली हो, ओ झुमके वाली हो, जरा चल के बता कैसी रे तेरी जान।
1: बालिका वधू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजें थी, आनंद बख्शी के बोल थे, आर डी बर्मन की तर्ज थी।
2: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
3: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
2: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
4: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारी कर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
2: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा से
5: भारूड एक ऐसी कला है कंटेम्प्रेरी है वो उसी दिन जो भी गांव में घटित होता है शाम को भारूड में रिफ्लेक्ट होता है।
6: भारतीय थिएटर की दुनिया की एक बहुत मशहूर हस्ती
5: जुलवा में बहुत मेमोरेबल रोल किया उन्होंने, उसके बाद एक झुंझ वारियासी जो मैंने नाटक किया उसमें से बहुत ही बेहतर काम उन्होंने किया।
6: एक निर्देशक और एक प्राध्यापक
5: तो उनको लगा था कि भाई अब बड़ा कुछ 45-50 साल का कोई बुजुर्ग आएगा
6: जी।
5: तो उनको लगा कि ये क्या करेंगे, ये तो हमसे भी छोटा बच्चा लग रहा है।
6: एक बेमिसाल हस्ती पद्मश्री प्रोफेसर वामन केंद्रे।
5: तो हमें भी तो नाटक इसीलिए करना है कि हमें ये सारी विसंगतियां है, ये जो दीवारें खड़ी करना है, इससे क्या बनने वाला है।
6: उजाले उनकी यादों के 16 अगस्त से 6 सितंबर हर रविवार शाम 4 बजे सिर्फ विविध

त्रिशूल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाजें लता मंगेशकर और नितिन मुकेश की थी। साहिल लुधियानवी की रचना आपने सुनी खयाम की। ये तर्ज देसी गाने के साथ ही आज का हम है राही प्यार के कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।

राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। 8 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
1: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर.gov.in पर।
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
5: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के गंगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के दुर्गम इलाकों में जनगणना का पहला चरण वाली 1 सितंबर से शुरू होगा। इससे पहले नागरिकों की सुविधा के लिए आज से 31 अगस्त तक स्वगणना की विशेष सुविधा दी जाएगी। 1 अक्टूबर को संदर्भ तिथि मानकर लद्दाख में जनगणना 2027 पूरी हो जाएगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
6: लद्दाख देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बनने जा रहा है, जहां जनगणना 2027 का कार्य पूरा किया जाएगा। इसके अंतर्गत जनसंख्या गणना 1 से 30 सितंबर तक होगी। स्वगणना आज से शुरू हो रही है। लद्दाख में पूरी आबादी को शामिल करने के लिए करीब 637 गणना ब्लॉक बनाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जनगणना संचालन अधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि सितंबर में जनसंख्या गणना कराने का निर्णय क्षेत्र में कड़ाके की सर्दी, दुर्गम इलाकों और सीमित पहुंच को देखते हुए लिया गया है। जनसंख्या गणना में आबादी के वितरण, जनसांख्यिकी संरचना, शिक्षा, आर्थिक गतिविधियों, पलायन, दिव्यांगता, भाषा, प्रजनन और आबादी से जुड़ी अन्य जानकारियां जुटाई जाएंगी। जनगणना 2027 डिजिटल माध्यम से कराई जा रही है। यांगचेन डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
5: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने UGC नेट परीक्षा के 3 विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र के लिए दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की है। इन तीनों विषयों के पेपर में कई तरह की त्रुटियों की शिकायत मिलने के बाद ये निर्णय लिया गया है। NTA ने बताया है कि अंग्रेजी विषय की परीक्षा 9 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक प्रथम पाली में, वाणिज्य विषय की परीक्षा उसी दिन दोपहर 3 बजे से

0: शाम 6 बजे तक दूसरी पाली में होगी। समाज शास्त्र विषय की परीक्षा 10 सितंबर को सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक पहली पाली में आयोजित की जाएगी। पीएम गतिशक्ति पहल के अंतर्गत अब तक विभिन्न मंत्रालयों की लगभग 18,66,000 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली कुल 396 अवसंरचना परियोजनाओं की मंजूरी के लिए सिफारिश की गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया है कि इनमें से 256 परियोजनाओं को मंजूरी दी जा चुकी है। इन परियोजनाओं में से 198 परियोजनाएं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में है। मंत्रालय ने बताया है कि इन परियोजनाओं का मूल्यांकन नेटवर्किंग प्लानिंग ग्रुप एनपीजी तंत्र के माध्यम से किया गया है। ये जानकारी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने संसद में हाल ही में संपन्न मॉनसून सत्र के दौरान लोकसभा में लिखित उत्तर में दी। इसका उद्देश्य विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों तथा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत योजना और अवसंरचना परियोजनाओं के समन्वित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए एक साथ लाना है। ब्रिक्स के पर्यावरण कार्य समूह और जलवायु परिवर्तन पर संपर्क समूह के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। भारत कल ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 12वीं बैठक की मेजबानी करेगा। कार्यक्रम का आयोजन भारत की ब्रिक्स की अध्यक्षता के विषय के अंतर्गत किया जाएगा। इस वर्ष इस सम्मेलन का विषय लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण है। ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक का संचालन केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में जेपीएससी जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर विद्यार्थियों के विरोध प्रदर्शन का आज 24वां दिन है। विद्यार्थियों ने भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में अपना प्रदर्शन तेज कर दिया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सरकार और विद्यार्थियों के प्रतिनिधियों के बीच आज बातचीत का एक नया दौर होगा।
1: जेपीएससी जेएसएससी अभ्यर्थियों ने कल रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से अल्बर्ट टिक्का चौक तक विरोध मार्च निकाला। छात्रों ने जेएसएससी सीजीएल परीक्षा रद्द करने और भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग को लेकर नारेबाजी की। इस बीच राज्य सरकार ने आंदोलनरत छात्रों को आज दोपहर 2 बजे रांची में बातचीत के लिए आमंत्रित किया है। छात्रों को अपने विधिक सलाहकारों के साथ वार्ता में शामिल होने की अनुमति दी गई है। रिफॉर्म मंच ने कहा कि सरकार छात्रों की मांगें स्वीकार करती है तो आंदोलन समाप्त करने की दिशा में कदम उठाया जा सकता है, अन्यथा आंदोलन जारी रहेगा। छात्रों ने 20 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन का ऐलान पहले ही कर रखा है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: मध्य प्रदेश के इंदौर में देश में पहला वर्चुअल चिड़ियाघर शुरू किया है। इसके साथ ही इंदौर प्राणी संग्रहालय में 14D सिनेमा थिएटर और वर्चुअल जंगल सफारी की सुविधा भी शुरू हुई है। एक रिपोर्ट।
2: करीब 4.5 करोड़ रुपए की लागत से पीपीपी मॉडल पर 14D सिनेमा और वर्चुअल जंगल सफारी तैयार की गई है। वर्चुअल जंगल सफारी में लोग तकनीक के जरिए जंगल और वन्य जीवों का आभासी अनुभव ले सकेंगे। वहीं 14D सिनेमा में दर्शकों को फिल्म देखने का अलग अनुभव मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इन सुविधाओं का कल लोकार्पण किया और स्कूली बच्चों के साथ 14D सिनेमा में फिल्म भी देखी। इन नई सुविधाओं से बच्चों और पर्यटकों को वन्य जीवों और प्रकृति को तकनीक के जरिए समझने का मौका मिलेगा। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
0: कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार 2026 प्रदान करेंगे। मंत्रालय ने बताया है कि इस अवसर पर पेंशन मित्र पुस्तिका और देशव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र डीएलसी अभियान के 5वें चरण के दिशा निर्देश भी जारी किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान एक बैंक प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2026 के लिए 15 कर्मचारियों का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र की प्रगति केवल सामूहिक संकल्प और एकता की शक्ति से ही संभव है। उन्होंने सोशल मीडिया पर संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए कहा कि यही भावना भारत की प्रगति और समृद्धि की मजबूत नींव है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में भ्रामक लेबलिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता विषय पर एक परिचर्चा

0: प्रसारित करेगा। कार्यक्रम के दौरान श्रोता स्टूडियो में विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। सवाल पूछने के लिए टेलीफोन नंबर है 0112331 0481 या 2371717 या 2371710 और 2331444। व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी प्रश्न भेजे जा सकते हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज पटना में चुनावी साक्षरता क्लब का शुभारंभ करेंगे। इस पहल को चुनावी साक्षरता, डिजिटल सहभागिता और लोकतंत्र में नागरिकों की सार्थक भागीदारी को नई गति देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने आज ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए आज तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि 4 जिलों के लिए रेड अलर्ट और 11 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
1: राज्य सरकार ने प्रभावित जिलों के अधिकारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है और भद्रक, बालेश्वर और जाजपुर में राहत और बहाली के काम में तालमेल बिठाने के लिए 3 आईएएस अधिकारियों को तैनात किया है। मछुआरों को कल तक समुद्र से दूर रहने की सलाह दी गई है। बालेश्वर जिले के जलेश्वर में लगातार बारिश के कारण एक दीवार गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई है और एक अन्य गंभीर रूप से घायल है। मयूरभंज जिले में रेल सेवा भी प्रभावित हुई है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू हो गई है। पुंछ जिले की मंडी तहसील में बाबा श्री बूढ़ा अमरनाथ मंदिर की 12 दिवसीय ये वार्षिक यात्रा 28 अगस्त रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। एक रिपोर्ट।
2: उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज सुबह जम्मू के भगवती नगर यात्री निवास से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को कड़ी सुरक्षा के बीच पुंछ के लिए रवाना किया। राजौरी और पुंछ जिलों में यात्रा मार्ग पर सुरक्षा और निगरानी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुंछ जिला प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अग्रिम पंजीकरण की सुविधा देने के लिए एक विशेष पोर्टल भी शुरू किया है। समुद्र तल से करीब 4600 फीट की ऊंचाई पर स्थित बूढ़ा अमरनाथ मंदिर में स्वयंभू सफेद पत्थर का शिवलिंग है। यात्रा से जुड़ी सहायता के लिए श्रद्धालु जम्मू यातायात नियंत्रण इकाई से 0191246732 और श्रीनगर यातायात नियंत्रण इकाई से 0194247987 पर संपर्क कर सकते हैं। जम्मू से एन गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विकास नापा।
0: और अब खेल खबरों के साथ हैं कृष्णकांत।
3: BWF बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप आज नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में शुरू होगी। भारतीय खिलाड़ी आज से अपने अभियान की शुरुआत करेंगे। महिला सिंगल्स में पूर्व विश्व चैंपियन और 9वीं वरीयता प्राप्त पीवी सिंधु का मुकाबला आयरलैंड की सोफिया नोबेल से होगा। महिला डबल्स में ट्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी पहले दौर में स्पेन की पाउला लोपेज और लूसिया रोड्रिगेज से भिड़ेंगी। पुरुष डबल्स में 5वीं वरीयता प्राप्त भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को बाई मिलने के बाद वे पहले ही दूसरे दौर में प्रवेश कर चुके हैं। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत आज श्रीलंका के गौले अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में श्रृंखला के पहले टेस्ट मैच के तीसरे दिन पहली पारी के अपने 460 रन से आगे खेलना शुरू करेगा।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद प्रियंका। वंदे मातरम पर तीखी तकरार और यूजीसी नेट पेपर में गड़बड़ी से जुड़े खबरों को आज हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों ने प्रमुखता दी है। राजस्थान पत्रिका ने लिखा है, आजादी के उत्सव के बाद सत्ता और विपक्ष में सियासी संग्राम। कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम के गायन के बीच टोका टाकी, भाजपा बोली माफी मांगे। रेलवे स्टेशनों के पानी में जहरीले बैक्टीरिया मिलने की सीएजी की रिपोर्ट के बाद नवभारत टाइम्स ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के इस बयान को सुर्खी दी है कि रेलवे करीब 20,000 जगहों पर नया टैंक टू टैप पानी फिल्टर सिस्टम लगाएगा। पुरानी टंकियां बदली जाएंगी और नियमित जांच होगी। 5 बार के तृणमूल विधायक आशीष बनर्जी के दफ्तर में खुदकुशी की खबर को जनसत्ता सहित कई अखबारों ने प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने लिखा है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट हटाने की बजह जान सकेंगे यूजर्स। अमर उजाला की सुर्खी है, लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद बड़े सुधार की चल रही है तैयारी। छोटे शहरों में जेईई नीट सीयूईटी के मुफ्त कोचिंग सेंटर खोलेगी सरकार। पंजाब हरियाणा सहित 7 राज्य साथी पोर्टल से पायलट प्रोजेक्ट में 21 लाख बच्चे ले चुके हैं कोचिंग। पत्र ने अपने संपादकीय में लिखा है,

0: कभी नक्सलियों का सबसे मजबूत गढ़ रहे बस्तर में आजादी के बाद से पहली बार तिरंगा फहराया जाना और प्रधानमंत्री मोदी का अपने संबोधन में युवा कार्यबल पर जोर देना स्वागत योग्य है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी अर्थपूर्ण होगा जब विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। दैनिक भास्कर की खबर ध्यान खींचती है, न इंटरनेट न बिजली, दीवारों पर ही नोट्स तैयार किए। राजस्थान के बाड़मेर और आसपास के जिलों के करीब 18 गरीब होनहारों ने नीट क्वालिफाई किया।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, लद्दाख और जम्मू कश्मीर के बर्फबारी वाले इलाकों में जनगणना 2027 के लिए स्वगणना आज से शुरू। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यूजीसी नेट परीक्षा के तीन विषयों अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र में त्रुटियों की शिकायत के बाद इनकी दोबारा परीक्षा कराएगी। झारखंड में प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों की आज रांची में राज्य सरकार के साथ नए दौर की वार्ता। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के गांगई क्षेत्र में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट। जम्मू कश्मीर में बूढ़ा अमरनाथ की वार्षिक यात्रा आज से शुरू। और BWF बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप आज से नई दिल्ली में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: अभी हमारे श्रोता सुन रहे थे समाचार प्रभात आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है, FM बैंड 101.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। प्रातः के 8:15 हो चुके हैं। आइए श्रोताओं, अब आपको सुनवाते हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम कुछ दिल से।

कार्यक्रम कुछ दिल से लेकर एक बार फिर हाजिर हो गई हूँ। मैं आपकी दोस्त और रेडियो होस्ट हीना जैन और मुझे सुन रहे सभी श्रोताओं का मैं इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, बारिश का नाम सुनते ही मन में कितनी सारी तस्वीरें उभर आती हैं। आसमान पर छाए काले बादल, खिड़की पर गिरती बूंदे, मिट्टी की सौंधी खुशबू, पेड़ों पर चमकती हरियाली और कहीं दूर से आती गर्मा गर्म चाय की खुशबू। बारिश सिर्फ आसमान से गिरती बूंदों का नाम नहीं है, बारिश तो एक एहसास है। किसी के लिए बचपन की याद, किसी के लिए प्रेम की पहली कहानी, किसी के लिए मिट्टी की खुशबू, तो किसी के लिए एकांत में खुद से मिलने का बहाना। और शायद इसलिए बारिश की हर बूंद कुछ कहती हुई सी लगती है। तो आइए दोस्तों, आज इन बूंदों की आवाज सुनते हैं, बारिश की खुशबू को महसूस करते हैं और जिंदगी के कुछ खूबसूरत रंगों से मिलते हैं कार्यक्रम कुछ दिल से में। तो इन्हीं बातों के साथ सबसे पहले सुनते हैं एक प्यारा सा बारिश पर आधारित गीत। आइए दोस्तों सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।